जो हमने टॉप 23 है जो बिहार में जाने डायरेक्ट में हम करके लेकर घर को खबर से इसराइल देखो कहने से हर केंद्र बेटा बहुत महत्व सहायक स्वामी जो बिहार में टॉप 23 है जाने से पहले

जाने तो क्या तू स्पर्श क्या तेरे सारा लागत हो हम अपने पूरे अतीत को जाए तो काट चिंता ना छोड़ पांच मिनट गुटू जेलों से प्रदर्शन के साथ आओ वहाँ से ही पता किसान चुटकी लगती सीधा तुम की तारे रखा अब सब कुछ लगे पड़े तो यहाँ

आर्मिस्ताना बासुरी ने तोर पालिका लेने पर कार्य पालिका को बैठक पाया सुग्रीव भयपुर सहरों टाइगर देशी का कार्य विधेयक मापदंडा राष्ट्रपति में प्रकाशन करेगा था सामाजिक सुरक्षा महिला समर्थन स्वास्थ्य रा स्थानीय सेवा व्यवस्था पर लाए व्यवस्थित बनाने उद्देश्य ले कार्य विधेयक टाइगर देश बनाए रखने पालिका ले राष्ट्रपति में प्रकाशन करेगा हो स्थानीय सरकार संचालन एंटरप्राइज सहायता को दफा एक सैंती को दफा तेरह तीन बमोजिम सभी को जानकारी कराए कि सूचना प्रकाशन करिए को नगर पालिका ने जनाए को सा राष्ट्रपति में प्रकाशित दस्तावेज न बाल को संचालन कार्य बीते 2083 लैंगिक हिंसा संचालन कला की सिफारिश प्रणाली संबंधी निर्देशिका 2083 असंगठित क्षेत्र में आपत्तस्तर में महिला दंड प्रभावी तथा हिंसा पीड़ित महिला कलाई बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य विधि 2083 समावेश गरेको छ त्यसै गरी व्यवसायिक बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्य विधि 2083 को प्रयोग कार्य विधि तथा समुदाय स्तरमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई प्रवर्तन कार्यक्रमका सञ्चालन कार्य विधि 2083 समेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ नगरपालिकाले यी कार्य विधि तथा निर्देशिकाले सामाजिक सुरक्षा महिला संरक्षण स्वास्थ्य र स्थानीय सेवा व्यवस्थापनलाई थप

सिंह चित्तर लखनार अकुला प्रदेगा बांधवगायक प्रजाति को प्रस्ताव फेंकना कराना था ये तो प्रज्ञा राष्ट्रीय निकुंज को नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष को प्राथमिक योजना करना शुरू करिए कोष का प्रमुख अजित तुंगाम पे जानकारी उपाय उनके अनुसार निकुंज में रहेगा बात तथा नेतृत्व परिषद लाई आवश्यक पड़ने खाद्य स्रोत को अवस्था किन करना इसको करना करी निकुंज का संरक्षण अधिकारी तथा सूचना अधिकारी सुरक्षाई पोहेल ने बाघ को आहार प्रजाति को पहचान संख्या खाद्य संतुलन को अवस्था मूल्यांकन करना करना महत्वपूर्ण होने बताओ भाई करना का लगी एक जना जनशक्ति पांच वा हात्ती चार वा मोबाइल मोटरसाइकिल परिचालन गरिएको छ। वैशाख 31 देखि शुरू भएको गणना 20-30 सम्म संचालन हुने जनाइएको छ। आज हामी तपाईँको प्रश्न र सरकार र पक्षको जवाब लिएर आएका छौ। आज हामी पासको नगरपालिका अधिकारको खबरका टिआर चौधरीको प्रश्न लिएर आएका छौं।

0: some peas.
1: विषयतः मानवीयमेव स्थानीय क्षतिग्रस्त सञ्चेतना जगेर उद्देश्यनिका अन्तर्क्रिया रेडियो कार्यक्रमलाई जीवन सन्देशमा

स्वास्थ्य संख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण शाखा

0: प्रथान वर्तते राम्रोसँग सुत्ने गरौं।
1: दैनिक शारीरिक व्यायाम तथा योग

0: स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी, वैवाहिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में टिकी, यहाँ कल पुरुष स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक परिवर्तन से कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती।
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीसों घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कैदेश
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको मुखर बिना नशा दाग बैलक हाथ द्वारा अनि चना व्यायाम गर्नका फिजियोथेरापी तथा एक्युपेसर थेरापी विधि बसे उपचार गरिदिन्छ।
0: नशा दागले बिरामी हुँदै बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एक्युपेसर थेरापी से सफल उपचार गर्छै।
1: 24 घंटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिन्छ। नशा हेर्ने नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुकन पुनः सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिदिन्छ। कोशीले अस्पताल प्रणाली बाँसगढी शाखा 5 बाँसगढी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 बाँसगढी बर्दिया सँगसँगै फोनको रेखा 14 नम्बर

तपाई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द गरी धुन पाउँ घटिरहेकी तर फल नियन्त्रण गरी आज निर्णय काटी जीवन हजार निशा रोगमा बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यले प्रत्याशी दलित प्रचारी सर्जन

0: स्वास्थ्य भत्ता उज्जवला उपाधि के स्तर पर स्वास्थ्य बताओ
1: स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा चर्चित बजारी सदेश।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल

0: पानी लगन हो किस्त तीर्न से सामाघट पर्ण हो 3 लाख ऋण लेन हो 3 लाख से फिर तीर सको अब मन तीर पर्ण परिवार का था
1: वो अपना 3 लाख रूपया ऋण ले रहा थी 3 लाख रूपया चिंता कैसे करवाती ऋण लेने पर कई प्रतिशत ब्याज तीर पर अपना था वो उसने अपना सारा ब्याज सहित 3 लाख रूपया ऐसी
0: कहा

0: आबादी का दर और जोड़ती अवांछनीय गतिविधि का दर गैर कानूनी और वित्तीय अनुशासन विरुद्ध को जिंदगी कार्य हो।
1: भारत में पांच लाभिक वित्तीय संस्था लिमिटेड को रेडियो गुरुवार एवं कृष्ण कार्य में जारी प्रजारी संदेश
0: किशोरी कमल रक्त अल्पता बर्दिया जिला के किशोरी कमल में रक्त कमी अर्थात रक्त अल्पता के पर्व रक्त अल्पता हमारे सदर पटकरा लगना चौकड़ेगा अनुवांशिक कमियों को पढ़ाई में ध्यान देना समस्या न रक्त अल्पता में से पचकला काई साग पात दाल गुड़ियारा आरा मछली शिकार को फल फूल आयुक्त खाना नियमित पकाई जल फूट कम करी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो प्रभावान को सहकारी में स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी जनहित में जारी संदेश खाना छह महीना पास अनिवार्य शुरू करी अन्न घेराघरी साग सब्जी फल फूल सहित पूरक खाना ने बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए पूरक खाना संबंध दुई वर्ष समस्तार जारी थी
1: सहकार स्वास्थ्य कार्य जनहित में जारी संदेश।

0: हुई संस्कृत खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिना बसे दूर रही तना अना नियंत्रण करी आज कुछ कार्य जीवन अजरा मुसादार मुझे बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो प्रभावना सहकारी में स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी जनिक प्रदारी सनील
1: स्वास्थ्यबाट कब्जा लिइसकेपछि तोकिएको सात बमोजिम कर्ताको कार्य गर्नु रेलीको कानुनी र नैतिक दायित्व हो।
0: यदि वित्तीय सम्बन्धी

केंद्रीय संगठन से अपराधीमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

स्वाध्यास्त वर्षिक हमार संदेश स्वागत बात संघर्या तेन्द्र संग्रह विपुल कुमार कार्यक्रम प्रक्रिया से उत्पादित हमार संदेश प्रक्रिया का साथी एक्शन राजापुर पार्टी का रेडियो प्रतिबोधित संपर्क रेडियो आगे मांग उत्साह की नव पालिका भाग्य मस्जिद का संप्रसारण हुई की बात

0: से अपन गुणवत् से प्रेरणा मात्र लेखा बुझेन सुखा समय ऐना से आठ पाकर मरमत संभाव से सफाई करी
1: बीरी चिरोट मात्र टीकर आदि बुझाई बनुमन ने फाटी
0: बनु भीतर घर बनेना काम नहीं करी
1: बनुमो तिमी खाए गई से उस क्षेत्र में रहल आदि मजा से बुझा के कैसा छोरी
0: सुखा मौसम बनुमा आदि रखना वस्तु सवाई लाइटर लेकर नहीं करी
1: बनुमा आदि लगे देखे से लगभग बंद कार्यालय सामुदायिक बल को प्रहरी बन खबर करी सब कुछ सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई बनुमा विद्या क्षेत्र अनुसार बनुमा आगे लगेगा आग लगी भाई जैसा कौन से काम करना मने आग लगी मशीन नुकसान भी लगती को असर कई घर 60,000 रूपए समय जरिमाना व 3 वर्ष कई घर दूर सजाए हुई शिक्षा उन्होंने बनुमा आगे लगेगा और आग लगी हुई शिक्षा क्रियाकलाप नहीं करी और अपराध में सजी को खा सजाए भागीदार नहीं बनी डिविजन बल कार्यालय बढ़ दिया फोन नंबर 084-24-156
2: कपड़ा
3: मास्क

0: देखो बिना चित्र जो कोई यहाँ ऐसा था कि जो रास्ता यहाँ सिटी तो भी रास्ता रही है बढ़िया फिर वो बहुत बढ़िया चीज है फिर बहुत बता
1: रेडियो खुला लगे 10-15।

हमारे घर में पैर पड़ेगा तो अगर दूसरा खाना से नहीं खाए मोमो देंगे हम उनके नेपाल का जाएगा तो पूरा दूस करत पूरा देर खाना लगा हम उनके पूरा दिन चलते तो क्या चिंता करते हो।

भएपछि स्वस्थ जीवन अप्नाए निशा रोग झट्ट बहत त्यागी दिनभर जीवन खटाउने सन्तुलित खाना खाए व्यायाम सट्ट गरी धुनपान मदिरामा सेतुर रही तनाव भना नियन्त्रण गरी आज निर्णयकारी जीवन अचार निशा रोगमा बाँचे स्वस्थ जीवन अप्नाए रेडियो गुरुबाबा एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनैक मदारी सन्देश।

0: स्रोतों वनस्पतियों वन्य जंतु संरक्षण ने प्रभाव मानव जाति जीवन संभव नहीं से या कर संरक्षण में हम सब जुटी
1: पशु अमूल्य संपत्ति आगामी का काल से छीन करने नहीं बना सकता उन्हें उससे बना आगामी नियंत्रण करना हमारे सबको का दायित्व कर्तव्य हो
0: हमारा
1: सब कुछ अपन जमा क्षेत्र में हमने लिखा पड़ेगा सुखा समय आने से आगे पाकर मरहत संतानों से सफाई करी
0: बीड़ी चुरोट मार्फू पीकर आगे बुदाई बनोरों ने फाकी
1: बनोर पर बड़ा बड़ा काम नहीं करी
0: गन्नू तीन खाए गए थे क्षेत्र में रहना आगे बुदा से बुदा की जमा छोड़ी
1: सुखा मौसम बनोना आगे न

नाम गेटागुडी सब्जी फलफुल अनि प्रोपोजल पूरक खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त बनाए पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्तर पाइन्छ।